आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

0: समूद,
1: गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो समूद पर फिटकार है।
0: वलकद

उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे होशों में ही रहने दो।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

इसके अलावा पटियाला घराना बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसकी नुमाइंदगी अमानत अली खान और शफकत अमानत अली अरब के मकबूल सितारे रागा बॉयज कर रहे हैं। ये वो चंद मौसीकार हैं जो क्लासिकल मौसीकी की पहचान है और इनका गाया हुआ हर राग अपनी मिसाल आप है।

0: worry. That's why we are here.
1: Mainu pata tere dil vich ki lokan nu saadi samajh nahi main janda baby tu jaan ji main tera tu mere layi.
0: We are UCP ki duniya FM 92.6.
2: Ek naya andaaz,
3: ek nayi soch,
2: ek nayi pehchan,
3: ek nayi lagan.
2: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से.
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की,
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1.
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया.
3: यूसीपी की दुनिया. आप सुन रहे हैं FM 92.6.
2: सुनते रहिए.
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास अंसारी, और प्रोग्राम हम कर रहे हैं FM 92.6 से. और आज हम जो आज गुफ्तगू करेंगे उसमें जो शुरका हैं और जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बहुत दिलचस्प मौजू है. हमारा आज का जो ये रेडियो शो है, हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है, इसमें जो शुरका हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवाई देता हूँ. डॉक्टर शाजिया हसन साहिबा हैं, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट साइकोलॉजी को हेड करती हैं. उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मिस नईमा सरफराज. और ये दोनों मेहमान हमारे बहुत दिलचस्प मेहमान आज जिस चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे वो बुनियादी तौर पर एक आने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में है जो कि अक्टूबर 2025 के अंदर होने जा रही है. हम उसकी तारीखें भी इनसे पूछेंगे, बाकी चीज़ें भी पूछेंगे, और आपको बताएंगे कि ये कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो महज गुफ्तगू नशिस्त

0: का मकसद क्या है डॉक्टर साहब?
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा बड़ा अच्छा तारुफ कराया आपने और बड़े अच्छे तरीके से आपने हमारी कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ है, जिसको हम एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे थे ये प्रोग्राम, तो आपने बड़े अच्छे अंदाज से इसका इंट्रोडक्शन कराया। मैं जो कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करना चाहूँगी कि हम जो ये कॉन्फ्रेंस कराते हैं, ये हम पिछले 2-3 साल से कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट करा रहे हैं, और पहले हम 2 कॉन्फ्रेंसेस करा चुके हैं, उसके बाद अब ये थर्ड कॉन्फ्रेंस है जो हमने शुरू की है। इस पे हमने काम करना शुरू किया हुआ है तकरीबन 1 साल से
0: जी।
1: और ये कॉन्फ्रेंस है मेंटल हेल्थ, ह्यूमन डिग्निटी और क्लाइमेट चेंज पे
0: जी। और वो क्लाइमेट चेंज जो जिससे अभी हम ताज़ा ताज़ा मुतासिर हो रहे हैं,
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल,
0: और होते भी चले आए हैं
1: बेशक। इस वक्त हम हमारा पूरा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालात से दोचार है, ख़ास तौर पे पंजाब भी, सिंध भी, और मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशानी है, वो ख़ास तौर पे इंसानों को किस तरह से ज़हनी तौर पे मुतासर करती है, किस तरह से उन पे कुछ असरात ऐसे होते हैं कि जो उनकी डे टू डे लाइफ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, किस तरह से वो महसूस करते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। और ना सिर्फ ये कि उनके चैलेंजेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल या उनकी जो कम्युनिटीज़ की रिलोकेशन है उसी से रिलेटेड होते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो वो ख़ुद महसूस कर रहे होते हैं उस पर बहुत कम बात होती है।
0: ऐसे ही।
1: और जो दूसरा इसका जो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड है
0: जी।
1: उस पर हम ये जो बात करना चाह रहे हैं कि इंसान की जो तौकीर है, जो इज्जत है
0: जी,
1: जो डिग्निटी है, उसकी क्या अहमियत है, और फिर इस डिग्निटी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के साथ, कि वो हमारी कम्युनिटी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ है, जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, किस तरह से पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को इन मसाइल के साथ अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि ये जो 2 एरियाज़ हैं, इसका किस तरह के असरात हैं इंसानी जहन पे, और फिर उस इंसानी जहन पे जब असरात होंगे तो इंसानी माशरे पे क्या असरात होंगे, हमारा मुल्क जो है उस पे क्या इसके असरात होंगे, और इसी तरह से जो पूरी दुनिया में इस वक्त चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे माशरे वॉर को भी इस वक्त फेस कर रहे हैं, तो किस तरह से उसमें ह्यूमन डिग्निटी
0: जैसे गजा में हो रहा है, जिस तरह से और जगहों पे हो रहा
1: और जगहों पे हो
0: तो
1: रहा
0: उससे
1: है,
0: तो इंसानों के ऊपर क्या हालात असरात मुरतब होते
1: बिल्कुल हैं। जाहिर है उनकी बुनियादी जरूरियात को जब रोका जाता है, जब वो उनकी एक्सेस टू रिसोर्सेज मिनिमाइज हो जाती है, और जब उनको एक बड़ी रिस्पेक्टफुल लाइफ से एक बहुत ही मुश्किल हालात में रहना पड़ता है, दोनों सूरतों में, चाहे वो मौसमी तब्दीली हो और चाहे वो वॉर या अदर जो
0: कुदरती आफात हों या इंसान की तरफ से खुद मुसल्लत करदा इस तरह के वाकयात हों, इन दोनों सूरतों में जो आम इंसान मुतासर होते हैं, तो ये उसके हवाले से बुनियादी तौर पर कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, ये जाहिर है कि इस वक्त जो आलमी सूरत हाल हम देख रहे हैं, दुनिया में हर तरफ कियोस की कैफियत है, जंगे हैं, लड़ाइयाँ हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज के अंदर या क्लाइमेट चेंज जिसको कह लीजिए, उसके नतीजे में अभी हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारे नुकसान आते हुए
1: जी,
0: अच्छा कहीं ये जलजले की सूरत में, कहीं ये सैलाब की सूरत में, वो नेचुरल क्लाइमेट ही है जलजला, वो उसका क्लाइमेट चेंज के साथ उस तरह से डायरेक्टली शायद कोई लिंक नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे रीजन में ही हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो नुकसान हुआ है। तो यानी ये जाहिर है कि इस सारे तनाजुर के अंदर ये आने वाली कॉन्फ्रेंस जो अक्टूबर में हो रही है, अक्टूबर की कौन सी तारीखें इसके लिए आपने रखी है कॉन्फ्रेंस की?
2: जी सर, हमारी जो कॉन्फ्रेंस है वो 29 और 30 अक्टूबर को हो रही है। उससे पहले 2 दिन के एक और इवेंट्स है जिनको हमने डिग्नी लॉक्स का नाम दिया है। उसके लिए हमारी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर एवलिन लिंडनर,
0: ये वही हैं जो नॉर्वे से थी
2: जी,
0: और पहले भी यहां पर आई थी।
2: बिल्कुल सर, जो जनवरी में हमारे पास आई थी और तब भी उन्होंने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स यही वाले करवाए थे
0: जी।
2: उसी की कॉन्टिन्यूएशन है, 2 दिन के वो हैं, और उसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसका वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है ह्यूमन DHS के नाम से, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो से भी एसोसिएटेड है। हाँ जी,
0: ठीक है। مس نعیمہ یہ سب کچھ آپ نے بتایا ہے اس کا بہت شکریہ. تو یہ جو آپ کی کانفرنس سے پہلے اکتوبر کے اندر ہی دو دن کی آپ نے

0: एक्टिविटीज चलेंगे,
1: जी
0: वो सरगर्मियां, वो एक्टिविटीज क्या होंगी?
1: जी सर, उनका उनको हम नाम देते हैं डिग्नी लॉक्स का, और बेसिकली उसका मकसद ये है कि वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट क्लासेस के, आप कह लें यूजली हम उसमें एमएस लेवल के स्टूडेंट्स ही लेते हैं,
0: जो हमारे यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो जेरे तालीम तलबा और तालिबात
1: जी,
0: हैं,
1: बिल्कुल,
0: एमएस लेवल के, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं,
1: वो उसका हिस्सा होंगे, और वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें वो ह्यूमन डिग्निटी पे बात करती हैं कि
0: अच्छा, ये वो डिग्निटी से डिग्नी लॉ आप
1: एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, डिग्निटी डायलॉग, सो उसको कंबाइन करके उन्होंने उसका नाम रखा है डिग्नी लॉग,
0: डिग्नी लॉग
1: जी,
0: ओके
1: जी, सो उसमें वो डिग्निटी की बात करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरह के मसाइल हमारे बच्चों को जिनका सामना है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डिग्निटी एंड आल्सो ह्यूमिलिएशन, ये दो एस्पेक्ट्स हैं उसके, तो वो उस पे बात करती हैं, जैसे जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस हम फेस कर रहे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड,
0: रेशियल बेस्ड हो सकते हैं,
1: रेशियल
0: हैं,
1: कुछ और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं
0: उनके साथ,
1: जो उन जिनको जो बेसिक जरूरतें जिंदगी की नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए, सो वो उस पे बात करती हैं, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डिग्नी लॉग्स कंडक्ट करती हैं, एंड देन वो उस डेटा को कंबाइन करके उसको प्रेजेंट करती हैं, दैट्स हाउ द होल कॉन्सेप्ट वर्क्स
0: जी। ठीक है, तो मिस नईमा से जारी गुफ्तगु और डॉक्टर शाजिया साहिबा से जारी गुफ्तगु को हम इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू करेंगे, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा और हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामाइन, हम मौजूद हैं FM 92.6 से आपकी खिदमत में और एक बड़ी मुफीद गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा उसको जारी करेंगे जो हम वक्फे पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से जो ज़हनी सेहत है उसका मौसमियाती तब्दीली के साथ कैसे उसका ताल्लुक बनता है। सैलाब आया है, लोग बेचारे घरों से बेघर हैं, उनके जानवरों के लिए चारा मौजूद नहीं है, वो हर वक्त की उनको परेशानी है। फिर बाज़ जगह पे ये होता है कि जब उनके लिए इमदाद तकसीम की जा रही है, उनको कतारों में दिखा के उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारी तस्वीरें इस तरह से ना आए, वो उनके वक़ार को ठेस पहुँचाती हैं। कुछ इदारों ने मैंने देखा है कि वो ये काम किया है कि वो ये करते हैं कि उनके खैमों के अंदर ही जाकर तकसीम करते हैं ताकि कोई उनकी तस्वीर ना बना सके कि वो खुराक वसूल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जाहिर करती है कि ये जो कुदरती आफात हैं, क्लाइमेट चेंज है, जो सलब सैलाब आए हैं, इसके नतीजे में इंसानी जो वक़ार है उसके ऊपर कितना बड़ा धचका लगता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2010 के सैलाब के दरमियान मेरी फैमिली को मूव करना पड़ा मुजफ्फरगढ़ से और बहावलपुर में अपने अजीज़ों के यहाँ जाकर ठहरना पड़ा, और 5 दिन तक जब वो ठहरे उनके घर में और हमारे फैमिली के बहुत सारे अफराद थे, हमें खुद इस चीज़ का बड़ा शिद्दत से एहसास था कि उनके लिए एक बोझ है, बर्डन है, लेकिन रास्ते मुनक़ते थे और ये सारे मसाइल थे। तो उससे वक़ार का जो मामलात हैं वो इंसान को पता चलता है कि हम दूसरे के घर पे जाके बोझ बन गए हैं और दूसरा शख्स भी परेशान हो रहा होता है कि इतने सारे अफराद को हम खाना कहाँ से खिलाएं। तो यकीनन इन कुदरती आफात का जो ताल्लुक है या मौसमियाती तब्दीली का जो ताल्लुक है वो इंसान की ज़हनी सेहत के साथ इस तरह से बनता है। अब मुझे समझ में आ गई है कि ज़बरदस्ती नहीं गुजारा जा रहा बल्कि इसका वाकई ताल्लुक जो है वो इस तरह से बनता है। अच्छा, अब हम गुफ्तगू को समेटेंगे, हम ज़रा कॉन्फ्रेंस की तरफ दोबारा आएंगे। अब ज़रा ये थोड़ा सा मुझे डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस के जो मकासद हैं, वो तो ये मौजू जो है वो तो हमें बता रहा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, कोई वो डिस्कशन में हिस्सा लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह।
2: डॉक्टर साहब, इसके लिए जो कॉन्फ्रेंस का एक थीम है उसके मुताबिक तरीकाकार यही होता है। आप भी क्वाइट वेल अवेयर हैं आप कि कॉन्फ्रेंस के अंदर रिसर्च पेपर्स तो उसकी एक बेस होती है, और अगेन हम डिग्नी लॉग्स भी करवाएंगे और रिसर्च पेपर्स भी कराएंगे, और इसमें हमारे पास दो
1: रिसर्च पेपर्स तो डॉक्टर साहब प्रेजेंटर्स आकर प्रेजेंटर्स जो रिसर्चर्स भी हो सकते हैं और वो एकेडेमिया से भी ताल्लुक रख सकते हैं।
2: जी जी बिल्कुल।
1: वो क्या ये सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे इसमें?
2: जी, यही मैं आपको मजीद बताने जा रही थी कि इसमें हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लिम्ब्रिक आयरलैंड से भी लोग जो हैं वो शामिल होंगे, प्रोफेसर्स शामिल होंगे, इसी तरह से ओस्लो से, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे ओस्लो से भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास तकरीबन काफ़ी सारे अभी तक हमें जो लोग अपना काम और अपनी रिसर्चेस भेज
1: तो
2: चुके
1: तो ये
2: हैं।
1: इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई
2: जी, बिल्कुल हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं जी, और इसमें दो मोड्स हैं हमारे पास, क्योंकि जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पे हमारे पास ट्रैवल नहीं कर सकते वो ऑनलाइन अपने मकाले प्रेजेंट करेंगे, और वो हमें एक तो उससे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स भी डेवलप होंगे और दूसरा पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हाईलाइट होंगी। और उसके साथ साथ हम कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जो हमारे पैनल डिस्कशंस होती हैं कि जहाँ पे हमारे जो लीडिंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि इन एरियाज में काम कर रहे हैं वो बैठ के इसमें
1: जो
2: प्रैक्टिसिंग लोग हैं बिल्कुल, वो पॉलिसी मेकर्स भी हैं, वो कुछ रिसर्चर्स भी हैं, वो कुछ प्रोफेसर्स भी हैं जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो पैनल डिस्कशंस भी करेंगे। उसके अलावा कीनोट स्पीकर्स भी होते हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी होते हैं, तो हर शख्स जो इसमें शामिल होगा वो अपना इनपुट देगा, स्टूडेंट्स की तरफ से इनपुट भी आएगा, कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे जो इन एरियाज पे काम कर रहे हैं वो भी अपना काम प्रेजेंट करेंगे।
1: अच्छा, ये जो गैर मुल्की मेहमान आएंगे या पॉलिसी मेकर्स आएंगे या प्रैक्टिसिंग लोग जो है वो इस शोबे से आएंगे, क्या उनको आप हमारे सामीन के लिए क्या ये मुमकिन होगा उस मौके पे कॉन्फ्रेंस की गहमा गहमी में कि उनके साथ हम कोई प्रोग्राम कर सकें सामीन की
2: आगाही
1: के लिए? गैर मुल्कियों के साथ हम अंग्रेजी में कर सकेंगे और जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनसे हम उर्दू में कर सकते
2: जी
1: हैं।
2: बिल्कुल,
1: पॉसिबिलिटी हो तो बहुत अच्छा होगा।
2: बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारा ऑलरेडी ये प्लान में है कि जो भी हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं वो एक हमारा टीवी शो भी और रेडियो शो भी जरूर करें, ताकि जो कॉन्फ्रेंस के अंदर हो रहा है वो तो डेफिनेटली हम उसको लाइव भी करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी दी जाती है, लेकिन जब वो ये प्रोग्राम करेंगे तो आई बिलीव कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और वो जो पैगाम है वो भी बहुत जरूरी है कि एक आम सुनने वाला इंसान जो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ उस तक भी वो पैगाम पहुंच सके और ये लोग अपनी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो अपना नजरिया है, जो अपना जिस तरीके से वो चीजों को हैंडल कर रहे हैं, हम उनसे भी सीखें और वो हमसे सीखें कि किस तरह से मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं प्रोफेशनल्स को और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है।
1: जी मिस नईमा, आप जरा थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस के हवाले से मजीद बता दीजिए कि इसके कितने सेशंस होंगे और अगर आप बता सकें कि कुल कितने प्रेजेंटर्स इसमें आ रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस में अपने मकालाजात पेश करेंगे, मुल्की कितने हैं, गैर मुल्की कितने हैं, एक रफ सा आइडिया
2: ये।
1: और क्या इसमें जो यूसीपी की एक अच्छी खसूसियत है वो ये है कि ये इनक्रेज करती है अपने स्टूडेंट्स को भी कि ये भी मकालाजात पेश करें, तो क्या आपके डिपार्टमेंट से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हायर लेवल के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली एमएस लेवल पे या पीएचडी लेवल पे या इवन बैचलर्स लेवल पे बच्चे प्रेजेंट करेंगे इस तरह की?
3: जी सर बिल्कुल, ये हमारी कॉन्फ्रेंस का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बच्चों को हम उसमें शामिल करें और उन्होंने अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमें भेजना भी शुरू कर दिया है और हम एम कर रहे हैं कि हम अराउंड 100 पेपर्स तो ज़रूर इंशाल्लाह प्रेजेंट हों हमारी कॉन्फ्रेंस में, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। और उसके अलावा हमारे पास जो गेस्ट्स आ रहे हैं, जो कीनोट स्पीकर्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वो भी अपने कुछ रिसर्चेस प्रेजेंट करेंगे। सो ये हम सबके लिए लर्निंग का एक बहुत अच्छा मौका होगा।
1: जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजी के लोग ही जाकर इसको सुने, जिंदगी की किसी भी शोबे से ताल्लुक,
3: क्योंकि सर क्लाइमेट चेंज है, डिग्निटी है, तो वी आर एमिंग के हम उन लोगों को बुलाएं जो इस एरिया में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, वी आर ट्राइंग के हम वहां से भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं, पैनल्स में शामिल करें, क्योंकि उनकी राय लेना बहुत जरूरी है। जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं ऑब्वियसली दे नो मच बेटर देन अस।
1: अच्छा मिस नईमा, साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस में मकालाजात पढ़े जाएंगे, क्या ये कहीं किताबी शक्ल में या ऑनलाइन आम आदमी को पढ़ने के लिए दस्तियाब होंगे?
3: जी सर,
1: या इसकी एक्सेस लिमिटेड होगी?
3: बिल्कुल सर, हम ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स डेफिनेटली इसकी जो है वो शेयर करेंगे सॉफ्ट कॉपी में।
1: दुरुस्त है। और दूसरी ये कि जो इसकी सिफारिशात तय की जाएंगी वो कौन से गवर्नमेंट के इदारे हो सकते हैं मुतल्लिका जहाँ ये सिफारिशात भेजी जाए?
3: सर क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इन दो मेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली वो लोग जो जो एसोसिएशंस हैं जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, हम उसको इसका पार्ट बनाएं। क्लाइमेट चेंज पे जो लोग हैं, जिस तरह ह्यूमन डिग्निटी का डॉक्टर एवलिन है, वो ऑल ओवर द
1: वर्ल्ड
3: जो नॉर्वे से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि वो इसके बाद भी मेरा ख्याल एक और कॉन्फ्रेंस पे जा रही हैं, तो वो हर साल में 2-3 कॉन्फ्रेंस ह्यूमन डिग्निटी पे ही करवाती हैं। सो हमारा पर्पस भी यही है कि ये पैगाम जहाँ पे वो जा रही हैं हमारे थ्रू पहुंचता
2: रहा। उसके अलावा डॉक्टर इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि मेंटल हेल्थ पे भी वो काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, तो कोशिश यही होगी कि हमारी सिफारिशात उस लेवल तक पहुंचे।
1: उनमें से बात तो शायद उनको मधु भी शायद
2: मधु भी इसीलिए
3: कोशिश कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल,
1: अगर वो आते हैं तो वो एक तो बरहरास्त इंट्रैक्शन भी हो जाएगा और बसूरत दीगर ये कि वो जो सिफारिशात हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो आप मुतल्लिका महकमों को यकीनन जो है वो भेजेंगे। सामईन, आपने हमारे इन दोनों मेहमानों की गुफ्तगु सुनी जो कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक थी, उसके आगाज व मकासद के ऊपर बात हुई, मकालाजात तकरीबन 100 से ज़ायद होंगे, तलबा भी उसमें शामिल होंगे। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पाकिस्तान से भी रिसर्चर्स शरीक होंगे और बिरूनी दुनिया से भी लोग आएंगे। इनमें डॉक्टर एवलिन, जिनका जिक्र इन्होंने किया, मैं उनसे मिल चुका हूँ, बहुत डायनामिक बुजुर्ग हैं, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं और उनका जो स्टाइल है इंतहाई पॉजिटिव है। पिछली कॉन्फ्रेंस के मौके पर मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरी ख्वाहिश थी उनके साथ हमको प्रोग्राम करें, लेकिन उनकी बेतहाशा मसरूफियात और ज़ाहिर उनकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए हम वो ना कर पाए। अब की बार ऐसा कुछ अगर हो गया तो मैं डॉक्टर शाजिया साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोई इस चीज का एहतमाम जरूर करें।
2: डॉक्टर, मैं सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त करूंगी कि आप प्लीज कॉन्फ्रेंस की जो डेट्स हैं वो जरूर शेयर कर दें।
1: जी जी प्लीज, वो जरा आप इसकी जो डेट्स हैं, बल्कि मैं आपसे ही कहूंगा کہ اس کی جو ڈیٹس ہیں
2: 29 اور 30 اکتوبر کو جی یہ کانفرنس انشاءاللہ ہوگی.
1: بالکل.
2: تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو ہمارے سننے والوں میں پروفیشنلز بھی ہیں اور جو باقی بھی ایسے لوگ ہیں جو اس پہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, تو اگر وہ ہمیں اپروچ کرنا چاہیں تو وہ ضرور ہمیں اپروچ کریں 29 اور 30 اکتوبر کو
1: شریک ہوں. پیٹرن ان چیف جو ہماری اس کانفرنس کے ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر حماد نوید ہیں جو کہ پروریکٹر ہیں ہماری یونیورسٹی کے, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے. اس کو جو پیٹرنائز کرنے میں لوگ شامل ہیں ان میں محترمہ خدیجہ عامر صاحبہ ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہمارا جو ہے وہ اس میں شامل ہے. فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے ڈین جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد منظور بٹ صاحب, وہ بھی اس کے پیٹرنس میں شامل ہیں جو اس کو پیٹرونیج دے رہے ہیں اور سہولیات یہ سب لوگ مل کے دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک بنیادی طور پہ بین الاقوامی کانفرنس ہے, ظاہر ہے اس کے انتظامات بہت لمبے ہوتے ہیں. اس کے جو چیف آرگنائزر ہیں وہ ڈاکٹر صاحب آپ خود ہیں ماشاء اللہ, اور ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ ایڈ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو آرگنائزر اس میں ہیں ان میں جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا کام ہوتا ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے, ڈاکٹر بشرا ناز اس میں شامل ہیں, محترمہ نعیمہ سرفراز صاحبہ جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی اس کے آرگنائزرز کے اندر موجود ہیں, ڈاکٹر گلناز انجم صاحبہ ہیں, اور پھر کانفرنس کی جو سیکرٹری کے طور پہ فرائض سر انجام دیں گی وہ محترمہ مومنہ نیر صاحبہ ہوں گی. تو یہ بہت ڈائنامک سے لوگ ہیں, بہت تجربہ کار لوگ ہیں کانفرنس کے حوالے سے, اور یقیناً اس کے شرکا کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ڈاکٹر شازیہ صاحبہ اور محترمہ نعیمہ سرفراز صاحبہ سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور سامعین آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ اپنی تجاویز اور آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.

गिटारिस्ट हैं जुल्फ़िकार खान, उसके अलावा इनके वोकलिस्ट हैं, और लाइक ज़्यादा इनको रैप के सेंस में जाना जाता है, और उनका नाम है अहमद अली, अहमद अली भट्ट, द एक्टर अहमद अली भट्ट। और उसके अलावा सलमान अल्बर्ट जो हैं, ही जॉइंड ईपी बैंड एज गिटारिस्ट। उसके बाद आबिद खान ने ड्रम्स में इनको जॉइन किया, और हसान खालिद ने इनको रिदम गिटार्स के लिए जॉइन किया, और वकार अहमद जो हैं उन्होंने भी बैंड को, यू नो, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं, वो ड्रम्स भी प्ले कर लेते हैं, गिटार भी प्ले कर लेते हैं, तो जो वकार हैं वो भी उसी सेंस में उन्होंने ज्वाइन किया। और ईपी बैंड का जो सबसे मज़े की बात है ना, उनका जो म्यूज़िक स्टाइल है वो लाइक सबसे हट के है, बिल्कुल डिफरेंट है। इनका जो बैंड था, ये फर्स्ट बैंड था पाकिस्तान में जिनके दो वोकलिस्ट थे और दो ड्रमर्स थे, और मतलब कि टोटल 8 मेंबर्स थे बैंड के जब स्टार्ट हुआ था। और वही बात है कि डिफरेंट इसलिए था क्योंकि उस वक्त ऐसे छोटे छोटे बैंड्स थे, या फिर छोटे भी नहीं सही, मतलब कि 3 मैक्सिमम 4 मेंबर्स पे चले जाते थे उनके बैंड्स। तो उसी तरह इनका भी जो था, इन्होंने स्टार्ट तो किया ही कि अपने वोकलिस्ट ही इन्होंने 2 रखे हुए थे, और क्योंकि मोस्टली बैंड्स में ये होता है कि एक ही वोकलिस्ट होता है और एक ही होता है जो लीड ले रहा होता है। इनका जो म्यूज़िक है, इट इज़ फ्यूजन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और जिनमें जो मेन जो हमें नज़र आता है वो ऑल्टरनेटिव रॉक और प्रोग्रेसिव रॉक जो है ना, प्रोग्रेसिव रॉक, ऑल्टरनेटिव रॉक तो ये होता है कि मतलब गिटार्स एंड लॉट ऑफ धुश धुश इन ईजी वर्ड्स, लेकिन जो प्रोग्रेसिव रॉक है वो ये होता है कि जो साथ साथ हर ज़माने के हिसाब से जो चेंज आ रहा होता है म्यूज़िक में, उसको भी अपने ज़हन में रखना, क्योंकि हमारे जो यहाँ अक्सर जो म्यूज़िक प्ले किया जाता है वो एक ही चीज़ को ऑप्ट कर लेते हैं और फिर उसी को ही लेके चलते हैं, लेकिन इन्होंने मेटल जो है उसको, मेटल म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। और जिस तरह के एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में हम बात ही उन लोगों की करते हैं जो पायनियर होते हैं, या फिर जो ऐसे होते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं आ सकती, एंड वन वे अनदर दिस इज़ राइट कि किसी बंदे की रिप्लेसमेंट नहीं मौजूद, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हर बंदे की रिप्लेसमेंट मौजूद होती है, लेकिन दैट पर्सन कैन नेवर बी व्हाट यू आर। तो इनकी जो बात करें, मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ उन आर्टिस्ट को डिस्कस करते हुए जो लाहौर से बिलोंग करते हैं, और ये भी लाहौर से ही बिलोंग करते हैं, और ये 2000 में फॉर्म हुआ था, और लाइक आई कैन ईजीली से कि यू नो मैंने इनके गाने बहुत सुने, और आई नो आई लाइक आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू देम, और नाउ आई मिस देयर म्यूज़िक, बिकॉज इनका जो म्यूज़िक है वो जैसे कि मैंने पहले कहा कि बिल्कुल हट के था मेटल और रॉक और इस टाइप की बातें जो थी ये डिस्कस करते थे, और ये जो बैंड है इट इज़ हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न म्यूज़िक, या फिर रॉक आर्टिस्ट जो होते हैं उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि इनको ऑप्ट किया और उसी को ही लेके चलते रहे। और इनकी जो डेब्यू एल्बम आई थी इर्तिका के नाम से आई थी, और ये 2003 में रिलीज़ हुई थी, और ये इनकी फ़र्स्ट मेनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट एल्बम थी जो मतलब किसी पाकिस्तानी एल्बम पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बेसिकली रिलीज़ की थी। और इनके जो प्रोड्यूसर हैं वो जुल्फ़िकार जे खान थे, फवाद खान और मिकाल हसन देमसेल्व्स थे, और इन्होंने ये एक ऐसी एल्बम थी जो हालांकि इनकी पहली एल्बम ही आई थी, और लेकिन ये म्यूज़िक इतना हटके था और इतना डिफरेंट था कि ये फर्स्ट स्टेप में ही क्रिटिकली अक्लेम्ड हो गई थी। और अब हम चलते हैं म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, और हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करके इनका गाना एंजॉय करके आते हैं, और फिर हम विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द बैंड ईपी। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6।

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCB की दुनिया. आप लोगों ने ज्वाइन किया है हमें ब्रंच शो में जिसका नाम है एक्सक्लूसिव लेजेंड्स विद आरजे फातिमा अहमद. आई एम ग्लैड कि हम लोग आज एक ऐसे बैंड को भी डिस्कस कर रहे हैं जिनका भी वन वे अनदर उनका रेडियो से ही ताल्लुक रहा है, क्योंकि ये जो म्यूजिकल बैंड्स होते हैं या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं, इनके जो मतलब कि एक मुकाम पे पहुंचते हैं, दे ऑलवेज गो थ्रू रेडियो और अपनी आवाज़ के थ्रू उनको पहचाना जाता है. और फिर आई रिमेंबर के मेरी जो वन ऑफ माय फैमिली मेंबर, शी वाज अ पार्ट ऑफ अ रेडियो एट अ स्पेसिफिक टाइम, और शी सेज के जब उन्होंने स्टार्ट किया था रेडियो, तो उनके बाद जब वो कहीं जाती थी और वहाँ पर लोग उनकी आवाज़ से उनको पहचान लेते थे कि मैंने आपकी आवाज़ कहीं सुनी है. तो आई थिंक दैट इज़ वट इज़ द मोस्ट लवलीस्ट थिंग अबाउट songs, voice and music and coming back to EP. वही बात है कि EP को भी उनकी पहचान इसी वजह से मिली थी कि उनकी आवाज़ और उनका जो genre और उनका style जो है, उनकी बिल्कुल different पहचान है. उनका like obviously lyrics जो हैं वो एक story बताते हैं, लेकिन उनका जो music है जिसको हम लोग सिर्फ कानों से सुन के enjoy करते हैं और हमारा continue करने का दिल करता है कि उस गाने को repeat पे लगा दें, तो उसी तरह EP के भी गाने ऐसे ही हैं कि आपको एक मैग्नीफाइंग एक साउंडस्केप में चले जाते हैं आप लोग, कि आपका दिल करता है कि आप बस इसी जोन में रहो और यही सुनते रहो. अब हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक पे, और फिर म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ईपी बैंड. स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6.

www.musicfm.edu.pk. FM 92.96 Life Station of Nation.

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया. आप लोगों ने ज्वाइन किया है एक्सक्लूसिव लेजेंड्स को ब्रंच शो आरजे फातिमा अहमद के साथ, और हम लोग सुन रहे हैं ईपी को आज. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईपी को आज, और अभी इतना एक एंथुजियास्टिक किस्म का गाना लगा हुआ था कि हम लोग स्टूडियो में कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सका, और हम लोगों ने फुल इंजॉय किया द फैक्ट कि यू नो ईपी. मैं भी यही डिस्कस कर रही थी कि ये एक ऐसा बैंड है जो नो मैटर वट, लाइक हमने पहले भी बहुत से बैंड्स को डिस्कस किया, लेकिन उन बैंड्स ने हमारे साथ ये नहीं किया जो आज हमारे साथ हुआ है. लाइक हम लोग ने इमेजिनरी गिटार्स बनाए हुए थे और अपने आप को फुल सिंगर समझ रहे थे. फवाद अली खान की बहनें और भाई बने हुए थे हम लोग, और स्टेज पे खड़े हुए हम लोग गाना गा रहे हैं, इन्जॉय करें. फुल आर्टिस्ट सीन हुआ हुआ था यहाँ पर, और ये एक ऐसा गाना है और ये एक ऐसा बैंड है जो आप लोगों को कंट्रोल नहीं रहने देता अपने आप पर. और आई थिंक इट इज़ आल्सो इनकी सक्सेस ही है, इनके म्यूज़िक की सक्सेस है कि कितना अरसा हो गया ये गाना गाए हुए इनको, लेकिन स्टिल इट इज़ मेमोरेबल एंड रिमार्केबल फॉर देम. और उसके अलावा हम लोग वही बातें, अभी मैंने ये सोचा था कि अभी हमने डिस्कस किया एक बहुत सैड गाना इन अ वेरी रॉक स्टाइल, तो इसी तरह हम लोग एक सैड स्टोरी डिस्कस करते हैं, ट्राइंग टू बी इन अ रॉक स्टाइल. इनकी डिसबैंडनिंग को डिस्कस करते हैं आफ्टर यू नो प्रोड्यूसिंग सच एन अमेजिंग एल्बम जिसमें बहुत मज़े मज़े के सिंगर्स थे, लाइक वक्त, हमेशा, आगोश, कहाँ है तू एंड स्टफ लाइक दैट. इतने मज़े मज़े के गाने. और उसके बाद दे एक इन्होंने इंटरव्यू दिया एक लोकल न्यूज़पेपर को, और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया 2007 में द फैक्ट कि यू नो दे आर डिसबैंडनिंग ड्यू टू वेरियस मेंबर्स एमिंग टू परस्यू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. एंड जो मोस्टली हम लोगों ने आज तक बैंड डिस्कस किए हैं, उन सब की ऑलमोस्ट यही रीज़न होती है कि यू नो उनकी उस तरह से सोल्यूशन नहीं बन सकता, या फिर एक वो फॉर्म नहीं उनका बन सकता कि वो उस तरह से डिस्कस नहीं कर पाते, और देन यू नो दे ट्राई टू प्लान इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. और फिर उनका होता है कि अच्छा चलो हम लोग म्यूज़िक के साथ साथ कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन म्यूज़िक के साथ साथ कंटिन्यू करना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता. तो फिर दे प्लान कि अच्छा चलो फिर वी विल डू समथिंग एल्स, और यू नो दे टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दैट. और उन्होंने कहा कि 2004 में यू नो उन्होंने हिंट किया कि एक और एल्बम आएगी, और यू नो लेकिन यू नो आई थी, लेकिन वो उस टाइप की थी कि क्योंकि बैंड जो था वो ऑलमोस्ट टूट गया हुआ था, और सब ने डिफरेंट डिफरेंट बैंड ज्वाइन कर लिया, कुछ ने अपना बैंड बना लिया एंड ऑल दैट. और फिर उसके बाद से कोई ऐसा उनके पास बना नहीं, मतलब कि एक सोल्यूशन नहीं बना उनके लिए कि वो वापस आ सकें. तो सब ने, किसी ने एक्टिंग करियर को ज्वाइन कर लिया, किसी ने अपना बैंड बना लिया, किसी ने बिल्कुल ही डिफरेंट राह पे चला गया. तो मैं वही बात है कि सबकी अपनी अपनी मर्जी थी, सब ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया. और जिसमें से हम लोग जानते हैं कि अहमद अली भट्ट एंड फवाद अली खान आर वन ऑफ दोज पीपल जो हु आर लाइक एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड आर एक्सट्रीमली एवरीवेयर, लाइक यू कैन हेयर अबाउट देम एंड यू कैन, आपको मैं कहीं भी जाके पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में जाके बोलूँगी फवाद खान का नाम लूँगी या फिर अहमद अली भट्ट का, तो एवरीबडी विल नो कि हु दे आर. सो दैट इज़ हाउ यू नो दे हैव गेन्ड देयर पॉपुलैरिटी आफ्टर द फैक्ट यू नो उन्होंने छोड़ दिया. उसके अलावा उन्होंने टीवी पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, इकट्ठे भी किए, अलग भी किए, बैंड से रिलेटेड भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया. और फिर 2009 में इन्होंने अनाउंस किया कि यू नो दे विल ऑफिशियली रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम 4 सालों के बाद. और यू नो उन्होंने डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने परफॉर्म किया, इन्होंने अपने अपने गानों को ऑब्वियसली इन्होंने गाया, और उनके पास वही फवाद खान एज अ वोकलिस्ट, अहमद अली भट्ट ऑन द कीबोर्ड्स, हसन खालिद ऑन द बेस, एंड सलमान अल्बर्ट जो हैं वो एज अ गिटारिस्ट, और वकार खान जो हैं वो ड्रम्स पे उनके साथ मौजूद थे. और इनका जो रीयूनियन था ये इन्होंने मतलब कि इतना वो इन्होंने खुद ने इतनी हाइप क्रिएट की, यू नो दे वर लाइक यू नो दे अनाउंसड ऑन अ स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड दैन दे वर लाइक यू नो वी विल बी परफॉर्मिंग, और you know everybody was going crazy just like I told before कि इन्होंने कुछ अर्से पहले एक गाना किया, और जब वो किया था इन्होंने गाना तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि यू नो आई वॉज स्टक टू माई स्क्रीन कि अच्छा अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, एंड मैंने देखे मैम इज लाइक ओ माई गॉड दे आर बैक. और यू नो उसके बाद इन्होंने अपनी सेकेंड एल्बम जो थी 2010 में उन्होंने रिलीज़ की,
जिन्होंने लाइक बीच में प्रोसेसिंग में थी और उसके बाद उन्होंने एक कम बैक किया एक थिएटर में इस्लामाबाद में और उन्होंने वहाँ पे अपना एक गिग परफॉर्म किया और फैंस जो थे दे वेंट क्रेजी एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वाई दे वेंट क्रेजी. अगर मैं भी होती तो मैंने भी डेफिनेटली यही करना था. और इन्होंने फिर 2010 से लेकर 2015 तक इनका एक न्यू रिवाइवल का एरा था जब इन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस एंड स्कूल्स में परफॉर्म किया. इन्होंने डिफरेंट सीजन्स जो होते हैं वहाँ पर जैमिंग के सेशंस किए और जो आजकल हमारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन चल रहे हैं म्यूजिकल सीजन्स वहाँ पर दे कैप्ट ऑन परफॉर्मिंग और अपने ही गानों को कुछ इन्होंने रीन्यू किया. और इस वक्त लाइक इनका गाना BGM में चल रहा है एंड आई एम लाइक यू नो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम. लाइक मैं बस यही सुनना चाहती हूँ कि ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं एंड इज़न्ट इट सो इंटरेस्टिंग. और EP का वही बात है कि इनका जो गाना पीछे चल रहा है ना आई एम सो डिस्ट्रैक्टेड बाई इट. लाइक आई वॉन्ट टू स्टॉप टॉकिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन या फिर आई वॉन्ट टू एक्ट लाइक आई एम फवाद अली खान एंड आई एम सिंगिंग. क्योंकि ये गाना एक ऐसा है कि आपके आपका खून अंदर से यू नो इट्स इट जस्ट इट डज समथिंग टू यू जो आप खुद नहीं समझ आती कि व्हाट इज़ दिस थिंग डूइंग टू यू. लेकिन बहुत बहुत डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल इसका मज़ा आता है. उसके अलावा इन्होंने अपने ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की कुछ शोर मचा के नाम से और इन्होंने मतलब कि अपनी स्टोरी को भी खुद इन्होंने प्रमोट किया और इन्होंने डिफरेंट ट्रैक्स जो थे उन्होंने लाइक अजब तमाशा के नाम से उन्होंने वो रिलीज़ किया. उसके अलावा इन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने अपने आप को मनवाया और दे इवन वॉन सो मैनी अमेजिंगली मतलब कि ऐसे अवार्ड्स इन्होंने जीते कि लाइक आपका दिल करता है कि यू नो यू वॉन्ट टू स्टैंड अप एंड क्लैप फॉर देम. लाइक इन्होंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉन्ग आगोश को इन्होंने जीता था. बेस्ट रॉक सॉन्ग जो वक्त इनका गाना है उसमें इन्होंने जीता था. उसके अलावा इर्तिका जो इनका सॉन्ग है वो बेस्ट म्यूजिक वीडियो का गाना उसने अवार्ड उसने जीता. और 2010 में सबसे लेटेस्ट है वो शोर मचा के नाम से इन्होंने बेस्ट म्यूजिक वीडियो जो है उसका इन्होंने जीता. और वही बात है कि अभी लेटेस्ट जो है सबसे जो इनका आखिरी गाना जो अभी चल रहा है BGM में सबसे लास्ट टाइम जो इन्होंने परफॉर्म किया 2017 में इन्होंने परफॉर्म किया ये. और यू नो ये जब भी परफॉर्म कर रहे हैं ना यू आर जस्ट वॉचिंग एंड गोइंग इनटू द ऑ कि यार दे आर बैक. एंड वो एक ऐसा कमबैक है और सरप्राइज बेसिकली इनका कमबैक था. और यू नो ऑडियंस जो थी ना वो उनका दिल कर रहा था कि यू नो वंस मोर वाला हिसाब था कि यू नो डोंट स्टॉप. और जो फैंस के जो टॉप मोस्ट फेवरेट समझे जाते हैं वो कहाँ है तू और वक्त जो है ये वाले जो गाने हैं ये ऑडियंस के फेवरेट समझे जाते हैं. और म्यूज़िक से ही हम चलते हैं मतलब कि साउंड्स एंड म्यूज़िक इसको ही डिस्कस करते करते आई वुड जस्ट लाइक टू एड अप टू द फैक्ट कि जो इनका इतना खूबसूरत म्यूज़िक है उसी तरह हमारी एक खूबसूरत हमारा प्लेटफॉर्म है हमारा खूबसूरत रेडियो है हमारा खूबसूरत मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग बात करते हैं आप लोगों से आप लोगों से कनेक्टेड रहते हैं और आप लोगों से ही यू नो बात करते रहना चाहते हैं. और अब हम चलते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक पे और फिर म्यूज़िकल ब्रेक के बाद हम लोग एक लास्ट लिंक पे आएंगे और फिर उसमें हम लोग यू नो वील वाइंड अप बिकॉज यू नेवर नो कि टाइम कैसे दौड़ जाता है. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6 UCP की दुनिया.

www.music.edu.pk. FM 93.6 Life Station of the Nation.

अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया है हमारा जो एक्सक्लूसिव लेजेंड्स ब्रंच शो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैंड ईपी को और आज हम लोगों ने ईपी को डिस्कस किया और ईपी के हमने स्टेप्स टू सक्सेस भी हमने डिस्कस किए और उनके प्रोमिनेंट लाइफ जो मैंने निकाले, उनके प्रोमिनेंट लाइफ ये है कि जब पीपल गॉट टू न्यू कि दे आर कमिंग बैक एंड आई थिंक दैट इज़ very lovely and that is something you want to know and you are super excited about ke yaar that is just amazing ke wo band jo hai wo wapas aa raha hai logon ki excitement itni zyada hai to I think that is the best part aur हम लोग शो को वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम का कभी पता नहीं चलता कि कैसे हुआ और क्यों हुआ और कभी भी उसका एहसास नहीं होता। उसके अलावा आई थिंक आई जस्ट से गुड बाय टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी और कीप लिसनिंग टू एफएम 92.6। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Ford 58.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
5: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
6: हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शम्स और आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सुर कहानी। म्यूजिक के बारे में जब हम सोचते हैं तो ज्यादा ख्याल हमें मेलेडी के बारे में आता है, ट्यून के बारे में आता है, और जो हमें सुनाई दे रहा होता है उसमें हमें ज्यादा जो मेलेडी है उसी के बारे में हम सोचते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट द मेलेडी दैट मेक्स अ सॉन्ग ग्रेट। जो बीट होती है, जो ताल होती है, जो पीछे चाल चल रही होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम अपने ईस्टर्न म्यूजिक में देखें तो ईस्टर्न म्यूजिक में हमें तबले का ख्याल आता है, ढोलक का ख्याल आता है, पखावज का ख्याल आता है। वेस्टर्न में हमारे ड्रम्स, कहून और बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सिर्फ हमारे बीट देते हैं। तो ऐसा क्या है कि एक गाने को उसे अपलिफ्ट करने के लिए हमें बीट की बहुत जरूरत होती है। आज मेरे साथ गेस्ट हैं उस्ताद अनिल वकास, जो कि पिछले 20 साल से तबले की तालीम ले भी रहे हैं और 15 साल से ज्यादा हो गए हैं कि सिखा भी रहे हैं। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ बजा भी चुके हैं, नेमली फरीदा खानम एंड मेनी मोर बिग नेम्स, जो कि अभी मैं लेना शुरू करूं तो शायद पूरा शो उसी में गुजर जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी हैंड ओवर द माइक टू उस्ताद अनिल वकास एंड लेट्स टॉक टू हिम अबाउट हाउ द बीट, हाउ चाल, हाउ ताल वर्क्स इन ईस्टर्न म्यूजिक। कैसे हैं वकास भाई?
7: ठीक ठाक, आप सुनाओ? ठीक ठाक,
6: बिल्कुल ठीक। वकास भाई, कॉन्वर्सेशन में आगे जाने से पहले लेट मी जस्ट क्लैरिफाई समथिंग जो हमारे सुनने वालों के लिए है। मैं पिछले 14 साल से क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ एंड पिछले 14 साल से वकास भाई मेरे साथ तबला भी, मेरे साथ कहून भी, हर तरह की प्रकाशन जो है वो वकास भाई के साथ ही मैंने की है। तो इसीलिए मेरे लिए अब वकास भाई भाई है एंड आई डोंट कॉल हिम अ सर नाउ, शायद शुरू में कहा होगा बड़ा was very small back then। कैसे विकास भाई आप?
7: मैं ठीक ठाक हूँ। पहली तो बात ये है कि मैं कोई उस्ताद तो नहीं, हाँ वो सिखाने का मुझे मौका जरूर मिल गया कि मैंने कई लोगों को सिखाया, कई बच्चों को तैयार किया, तो फिर भी मुझे लगता है कि शायद मैं उस्ताद नहीं हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट है वो तो जाहिर अपने टीचर को टीचर ही कहेंगे, तो ये बस उस्ताद जी की वजह से मुझे सिखाने का भी हुनर मिल गया।
6: ऑफ कोर्स वकास भाई, ये तो मुझे भी बात पता है कि आपको अनगिनत तालें आती हैं और उनको बजाने के डिफरेंट तरीके और उनमें डिफरेंट तरह की तिहाइयां देना उसमें, ये तो बल्कि हम भी जब रियाज कर रहे होते हैं आप एक ताल से दूसरी ताल में चले जाते हैं फिर वापस पिछली में आ जाते हैं। तो वकास भाई, आपकी जर्नी तबले के लिहाज से कहाँ से शुरू हुई थी?
7: मेरी जर्नी, मैं तकरीबन कोई 17-18 साल का था तब मुझे शौक बहुत जुनून था। तो तब मैंने उस्ताद ढूंढना शुरू किया, फिर मैं उस्ताद नीलम साहब के पास गया, इच्छरा में उनकी बैठक थी, वहां पे उनसे सीखना शुरू किया कुछ साल डेढ़ साल मेरे ख्याल से। उसके बाद वो बीमार हो गए तो उनके एक शागिर्द थे उनके पास जाना शुरू कर दिया। तो खैर कुछ दो ढाई साल के अरसे में ना फिर वो उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद 2009 में मैं 1 जुलाई को मैं उस्ताद परवेज पारा साहब जो कि मेरे उस्ताद हैं उनके पास चला गया। तो तब से लेके अब तक वो सीखने का सिलसिला जो ना वो जारी है अभी तक। मुझे तो अभी भी लगता है कि जैसे जैसे मैं सीखता जा रहा हूँ मुझे अब लगता है कि यार अब मुझे समझ आना शुरू हो गई कि मैंने सीखना क्या है। क्योंकि ये भी एक टाइम लगता है सीखने के लिए, सीखने के लिए भी सीखना पड़ता है कि क्या सीखना है हमने। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जैसे जैसे आप अपर लेवल पे जाते हो तो आपको समझ आती जाती है अच्छा यार ये हमने सीखा नहीं, ये पीछे हमने सीखा था, अब ये सीखना है। मतलब आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि आगे हमने करना क्या है। इस तरह मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और बड़े मौके दिए उस्ताद जी की वजह से मिले, फिर फहीम साहब की वजह से काफी जगह पे मुझे मौका मिला फहीम अजहर साहब।
6: तो विकास भाई अगर हम बिल्कुल ही बेसिक पे चले जाए तो ईस्टर्न रीजन में हमारे इंडो पाक में जो तबला है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन क्या है? जिस तरह पखावज भी है ढोलक भी है, इनका कोई एक ओरिजिन कोई एक सेंटर पॉइंट तो होगा जहाँ से निकले होंगे, तो वो क्या था?
7: असल में बात ये है कि ये इतनी पुरानी बात है कि कई लोग कहते हैं जी हजरत मीर खुसरो खान उन्होंने पखावज को काट के तो ये तबला बना दिया। असल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उनको काटने की जरूरत नहीं थी। ये

0: दो हिस्सों को जोड़ के, जिसको हम आजकल कहते हैं ना ओंगा बोंगा टाइप,
1: कॉन्गोस टाइप के,
0: उस तरह का होता था तबला। उसमें ना वो एक चेन बंदी होती थी, उसको बांध के रखा हुआ था दो हिस्सों, उसको भी वो तबले की तरह यूज करते थे बस। लेकिन बेसिकली जो असल में ना वो हजरत मीर खुसरो खान साहब ने इनको कोशिश करके मतलब तबले को फिर उस लेवल पे ले गए, तो वो सारा कुछ उनके नाम ही लग गया कि इन्होंने इजाद ही इन्होंने किया तबला। हालांकि ऐसी बात नहीं है,
1: उन्होंने सिर्फ इवॉल्व करने में हेल्प किया था।
0: हाँ, उन्होंने इतने अच्छे ताल उन्होंने बनाए, जैसे कि आड़ा चुताला, एक ताला, जप ताल, पांच ताल की सवारी, मतलब इस तरह के कई ताल है, मतलब काफी उन्होंने काम किए इस पे। उन्होंने तो खैर मौसीकी में मतलब गाने बजाने में इतना काम किया कि उनके इतने लिटरेचर पड़े हुए हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं। लेकिन ये कि जो इसका बेसिक जो है ना वो यही है कि असल में काम इसका दसवीं सदवीं ईसवी से ही, मैं तो समझता हूँ। अब सातवीं का भी कोई मतलब इतना कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, था जरूर, लेकिन ये दसवीं सदी ईस्वी से सुना कि ये बजना शुरू हो गया हुआ था, जो कि इतने इतने बड़े उस्तादों, क्योंकि वो बहुत बड़े उस्ताद थे जब वो बजाते थे, जो मैंने नाम लिया जदूर हसन बरबदी साहब,
1: ठीक है,
0: तो वो मतलब तब से ये सिलसिला जारी है।
1: तो वकास भाई, अभी आपने बात की डिफरेंट डिफरेंट तालों के बारे में, आपने आड़ा चुड़ताला की बात की, आपने एक ताले की बात की, जो ये डिफरेंट डिफरेंट ताले हैं, जिस तरह हम वेस्टर्न म्यूजिक में देखते हैं, हम 4x4 की बात करते हैं, 6x8 की बीट के बारे में बात करते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह हम वेस्टर्न में काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ईस्टर्न साइड पे आ जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी ताले हैं जो कि देखने को मिलती हैं। अगर हम शुरू करें तो दादरा, कहरवा, तीन ताल, आड़ा चुताला, और गिनते जाएं तो गिनते ही जाते हैं। तो इनमें क्या फर्क कहाँ आ जाता है, 4x4 क्या होता है इसमें, 6x8 क्या, मतलब इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है?
0: अब फोर जैसे हम कहते हैं ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब जी तो ये फोर आ रहा, मतलब ये हम गिनती गिन रहे हैं।
1: हाँ जी।
0: जब इसमें बोल आए ना धा धिन तक धिन धा धिन तक धिन धा धिन तक धिन, ये हो गया 4x8 का, ठीक है। अगर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया दादरा, इसको हम कहते हैं अपनी जुबान में, मतलब तबले की जो लैंग्वेज है,
1: ठीक है।
0: उसके बोल है धा तीन तीन ता धिन धिन, 1 2 3 4 5 6, धा तीन तीन ता। इसी तरह मुगलई है, वो सात मात्रे की है, तिन ता ता धिन धिन नाना धिन धिन नाना, तिन ता ता धिन धिन नाना धिन धिन नाना तिन ता। फिर इसके अलावा चंचल भी है, वो भी सात मात्रे का है, वो भी बड़ा यूज है, धिन ता धिन धा धा तिन ता ता धिन ता धिन धा धा तिन ता ता धिन ता धिन धा धा तिन ता ता, ये भी सात मात्रे का, जैसे वो आपने जिक्र किया उसका कहरवे का, वो आठ मात्रे का भी है, जैसे धा तिट तिन तिन ता तिट धिन धिन धा तिट तिन तिन ता तिट धिन धिन आठ। इसी तरह मतलब जैसे जैसे चलते जाएं 9 10 11 12, इस तरह पे बेशुमार है।
1: तो बेसिकली जस्ट गिनती है हमारी, जो 4x4 या फिर चार मात्रे की हम बात करते हैं अगर, तो उनको हमने तबले की लैंग्वेज में एक तरह से फिट करके, या फिर शुड आई से तबले की लैंग्वेज को उसके ऊपर रख के हमने उसको कंप्लीट किया हुआ है, ताकि गिनती भी हमारी पूरी हो और वो सुनने में भी अच्छा लगे। दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वकास भाई, मैं आपसे बेसिकली, अब आपने जो बात छेड़ दी है, जो आपने अभी तबले के बोल सुनाए थे, उनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। तो आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, ये है प्रोग्राम सुर कहानी, और हम कॉन्वर्सेशन में हैं अनिल वकास भाई के साथ, और हम बात कर रहे हैं कि तबले की और प्रकर्शन की हमारे रीजन में कैसे एवोल्यूशन हुई। सो हम आते हैं वापस एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: सिक्स बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया। दिस इज प्रोग्राम सुर कहानी और मैं हूँ आपका होस्ट हौरव शम्स। हम कॉन्वर्सेशन में हैं सर अनिल वकास के साथ और हम बात कर रहे थे कि हमारे जो ईस्टर्न म्यूजिक है उसमें प्रिकॉशन की एवोल्यूशन कैसे हुई। वकास भाई, मैंने अभी आपसे से पहले पूछा था, एक क्वेश्चन किया था कि जो धा धिन ता तिन जो सारे बोल हैं हमारी मौसीकी के, रादर तबले के जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज क्या मायने रखती है, धा क्या होता है, ता क्या होता है, एंड अगर उससे भी आगे देखा जाए तो हम गतों की बातें करते हैं, तिरकटों की बातें करते हैं, तो तबले की लैंग्वेज जो अपनी है वो भी बहुत फास्ट है। इस लैंग्वेज में है क्या ये चीजें और इनका मायने क्या है?
2: तबले की जो अपनी एक जुबान है ना, हालांकि कोई उसके बहुत ज्यादा बोल नहीं है, मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत कोई इसके 200-300 बोल है या 500। जो हमारे पास जो जिसको हम दाया कहते हैं, छोटा जो होता है मदीन, उसके 5 बोल है,
1: ठीक है,
2: और जो बायां बड़ा होता है उसके 2 बोल है। अब इन 7 बोलों को मिला के हम एक मेलोडी तैयार करते हैं, जैसे कि ता तिन तेट, इधर दे और इधर गे और के 2 बोल है। ये मैंने मदीन के बोल बताए थे, ता तिन तेट और दे, ये 5 बोल इसके हो गए, गे और के का बोल जो बायां का हो गया। अब इसको मिक्स करके ऐसी ऐसी मतलब वर्डिंग बनती है कि आप सुन के हैरान हो, ये भी होता है, मतलब ये तो सीधे सीधे बोल है ना। आज जब मैं करूँगा कड़ान, तो आपने कहा इसमें तो कड़ान कहीं नजर ही नहीं आया 5 बोलों में, या तगड़ान धाती ना गढ़ना गधना धटिदा कहना धटिदा कहना, मतलब कुछ ऐसे बोल हैं को वो लगता है कि यार ये तो 5 बोलों या 2 बोलों के साथ साथ में मिलते नहीं है, लेकिन असल में वो ही बोल है, उन्हीं को मिक्स करके साउंड इफेक्ट बनाए जाते हैं,
1: ठीक है,
2: जिससे वो बोल ऐसे लगता है चेंज है। जैसे घे मतलब घे मे वो ही घे घे गे गे गे गे, मतलब उसको फर्क कर दिया, के, मतलब उसको डिफरेंट तरह से हमने यूज किया। इसी तरह ता तिन और इसका तेट, ता तिन तेट देर, अब जो देर है ना उसको असल में जो देर देर का बोलना उसके लिए यूज करते हैं, वैसे वो कम यूज होता है क्योंकि वो ज्यादा पखावज में बजाया जाता है, दे का बोल, क्योंकि वो नीचे से बजता है, जो चीची वाली जो है ना छोटी जो मिडिल फिंगर है या आपकी लिटिल फिंगर है, वो ऐसे हाथ को उठा, क्योंकि ये ऑडियो हम इसमें दिखा तो नहीं सकते लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बताने की,
1: ठीक है,
2: मतलब ये बोल है, इनको मिला के हमें जैसे कोई कायदा बनता है, फिर गत बनती है, गत तोड़ा होता है, फिर उसके अलावा परन होती है, मतलब इसमें फिर कुछ और, मतलब इस तरह की कई चीजें बनती जाती हैं, जितना डीप जाते जाएंगे वो तो बताते जाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जैसे रेला होता है, रीला होता है उसका, जैसे धा त्रिकट तक त्रिकट धा त्रिकट तक धा त्रिकट तक त्रिकट, अब जब इसको दून में लेके जाएंगे, इस तरह इसको बजाकर, फिर एक होता है उसको कहते हैं रो बनानी, रो, क्योंकि ये चीजें आम बताते नहीं है, तो चलो यार इसको ना ही बताओ इसको क्या पता चलना, हालांकि ये बतानी चाहिए, क्योंकि एक जो होता है ना हमारा सोलो तबला, वो सीख के आप सुन सकते हैं, एक तो होता ना आम जैसे गाने पे बज रहा है उसमें धा था, आपको समझ आ रहे होते हैं, आप मजा ले रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने सोलो तबला सुनना है या आपने क्लासिकल तबला सुनना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको उसकी
1: नॉलेज
2: होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, कुछ तालों के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप उसको सुन के उसका मजा ले सकते हैं। जैसे कि कई चीजें होती है हमें समझ नहीं आ रही, हम कहते हैं यार हमें तो पता नहीं चल रहा क्या है, बंद करें इसको, इसलिए ये काम भी इतना ज्यादा इसलिए नहीं आगे आया क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते, सीख के अच्छा सुनना तो चलो रहने ही दो, जो हमें समझ आ रहा है उसका ही मजा लो, हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर सीख लिया जाए तो आपको वो जो आसान काम है ना उसका भी मजा, आपको उसकी भी समझ आनी शुरू हो जाती
1: है, ठीक है,
2: क्योंकि सीखने के बगैर तो आपको किसी चीज की समझ
1: नहीं आती।
2: इसी तरह जैसे मैंने अभी वो बात की रो की, रो कैसे बनाते हैं, मतलब मैंने कहा रहना ना जाए मैं बता दूं, रो जैसे हम कहते हैं धिन ना धिन, जो अब ताल 10 मात्रे का ताल,
1: ठीक है,
2: धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धर धर धर धर धर धर, मतलब तिटकिट के बोल कुछ इस तरह बजाए जाए वो लगे कि वो ही ताल, मतलब वही चाल भी वही रही, वो ताल भी नजर आता है लेकिन वो बोल सारे तिटकिट में आए, जैसे धर धर धर धर धर धर धर धर, मतलब वो इस तरह हो जाए, मतलब वो शक्ल आपको वो नजर आती रही, इसको कहते हैं रो। तो यही बड़े बड़े लोगों ने बजाया हुआ है, क्योंकि इसके इसके बारे में डिस्कशन नहीं होती, तो इसलिए लोग छुपाते भी हैं, बताते भी नहीं है। जैसे कि क्लासिकल गाना नहीं बताते, इसी तरह क्लासिकल बजाना भी नहीं बताते वो भी इसमें, क्योंकि काफी लोग हैं वो कहते हैं यार छोड़ो पर इसको ना ही आए तो अच्छा है, ताकि मैं ही नजर आऊं आगे। हालांकि ऐसा नहीं, आप एक चीज बताते हैं ना जब, तो आपको 10 चीजें नजर आती हैं।
3: ऐसे ही है,
2: मैंने क्योंकि मैंने सिखाना शुरू किया, मुझे तब पता चला कि यार सिखाने से ही ज्यादा, मुझे कई चीजों का नहीं पता था, जब मैंने सिखानी शुरू की मुझे समझ आनी, अच्छा मैंने अब इसको बताने, फिर मैंने उस पर रिसर्च करनी शुरू।
3: अच्छा, वैसे ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जब आप किसी को कुछ समझाना शुरू करते हैं तो उस समझाने के लिए आपको पहले खुद समझना पड़ता है, और उसमें आप खुद बहुत ज्यादा समझ जाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल ऐसी है। अब देखे ना, जैसे वो पखावज है उसके बोल थोड़े फर्क है, जैसे धोंग धोंग नाटक अत्ता कहते धाट धा गाटी धाट धा गाटी धाट धा। अब ये पखावज के ऊपर बजाने वाली चीज है, लेकिन हम तबले भी बजा लेते हैं उस हाथ कंट्रोल करके, क्योंकि उसमें जरा थोड़ा खुला अंदाज है बाएं का, और दाएं को इस तरह बजाया जाता है उल्टे हाथ से, या क्योंकि तो ऊपर से किनार नहीं ना जैसे इसकी होती, इसके ता ऐसे ऊपर खुला मारते हैं नीचे वाली उंगली से,
3: ठीक है।
2: तो तबले में फिर क्योंकि उसको ता बनाना होता है,
3: वो हम पहली उंगली
2: से करते हैं, तिंग तिंग तीन तीन, तो उस बोल थोड़ा सा चेंज हो लेकिन शक्ल वही रहती है। अब जैसे कि आपने गत की बात की, मैं पहले आपको कायदा बताता हूँ, क्योंकि जैसे राग बढ़ता है ना, सारे गमा पता नहीं सा नहीं था पमा करे साहब करते हैं जब, तो इन्हीं को लेके आप वेरिएशन मुख्तलिफ पलटे बना रहे होते हैं।
3: ऐसे ही
2: इसी तरह कायदे में भी मुख्तलिफ पलटे बन रहे होते हैं, जैसे कायदा भी एक फिक्स शक्ल होती है उसकी,
3: ठीक है।
2: जैसे ये भी जिक्र किया, धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना ताती तागे ना धा त्रिकट धाती धागे धिन्ना गिन्ना, तीन ताल का कायदा बड़ा मशहूर है,
3: ठीक है।
2: अब इसकी मुख्तलिफ वेरिएशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना, फिर हमने शुरू वाला बोल देना धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना ताती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे ना धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना धा धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना गिन्ना धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना, इसी तरह बोल की बढ़त होना शुरू हो जाते हैं। तो आप 10 पलटे बना ले, 20 बना ले, 50, पुराने बुजुर्ग तो घंटा घंटा भी बजा लेते थे, खैर अब तो खैर वो एक मिनट भी नहीं सुनते लोग। इसकी मुख्तलिफ आपको पहले तो शुरू में चंद शक्लें याद करनी पड़ती हैं, फिर बाद में जब ये याद हो जाती हैं तो उसके बाद आपको फिलबती इस पे काम करना होता है,
3: राइट।
2: कि वो सोचना नहीं, फिर आपने फिर वो उसी बोल को लेके आपने अपने ज़हन से फौरी आमद, इसमें आमद बड़ी जरूरी है, अगर आपको आमद नहीं ना आती तो आप नहीं बजा सकते तबला। उसकी वजह ये है, जैसे वो होता है ना एक कुदरती एक अंदर होती है बात बंदे का, यार ये इसके अंदर कुदरती है, सीखना नहीं पड़ा इसको, इसका गला कितना अच्छा है, कुदरती यार ये गा लेता गाना या कुदरती बजा लेता। इसी तरह जब आप सीख लेते हैं, अगर आपको आता है तो कुदरत आपको खुद ही वो आपके जेहन में डालना शुरू कर देती है, आपका जेहन खुलना शुरू हो जाता है, तो आप उसकी वेरिएशंस बनाना शुरू। उसके बाद इसकी हो जाती है तिहाई, क्योंकि हर कायदे के बाद एक तिहाई, पहले बुजुर्ग नहीं बजाते थे, ये तो अब आके ट्रेंड बन गया ना, तिहाई जरूरी है, नई तिहाई बजाई तो लो जी इसने तो तिहाई नहीं बजाई, फायदा क्या। पहले बुजुर्ग लोग इतने इतने पलटे बजा के वो वैसे ही छोड़ देते थे, तिहाई को वो जरूरी नहीं समझते थे, लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ बदल गया सब कुछ, अब उसकी कायदा मतलब हमने पलटे की, उसके बाद उसकी तिहाई, जैसे धाती धा के नदर गुड़ाती धा कितना करना धा आती धाती धा के नदर गुड़ाती धा कितना करना धा आती, मतलब इस तरह एक तिहाई छोटी बना ली या इससे बड़ी बना ली, धाती धा के नदर गुड़ाती धा कितना करना धा आती धा के धाती धा के धाती धाती धा के नदर गुड़ाती, मतलब एक चीज जो तीन दफा रिपीट होती है ना उसको तिहाई कहते हैं, जैसे दादा त्रिकुड़ा दिना दादा त्रिकुड़ा दिना दादा त्रिकुड़ा दिना, ये तीन दफा मैंने इसको पढ़ा ना, अगर इसको मैं तिहाई की तरह बोलूं ना दादा त्रिकुड़ा दादा त्रिकुड़ा दादा त्रिकुड़ा दादा त्रिकुड़ा, तो ये एक तिहाई बन गई छोटी।
3: तो वो मेरे ख्याल से अब ट्रेडिशंस के साथ और जिस तरह एवोल्यूशन हुआ है बजाने के तरीकों में, तो उसके साथ भी अब फर्क आ गया है।
2: बिल्कुल,
3: ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि इसे इधर रोका जाए, लेकिन अभी वक्त आता है एक ब्रेक का, तो हम इसी पॉइंट से वापस अब ब्रेक के बाद आके इसी पॉइंट से वापस अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। दिस इज FM 92.6 UCP की दुनिया और आप सुन रहे हैं सुर कहानी।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक डियर लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शम्स। दिस इज एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुर कहानी। मैं कॉन्वर्सेशन में हूं इस वक्त सर अनिल वकास के साथ। और वकास भाई, अभी आप मुझे इस ब्रेक से पहले बता रहे थे डिफरेंट तिहाइयों के बारे में, तो तिहाइयों के बाद अगली चीज व्हाट डू यू थिंक के तिहाइयों के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस तरह हम किसी चीज को कहते हैं, तो वो क्या चीज तबले के रवायात में होगी?
2: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने भी तिहाई पढ़ी है, बताई अब इस तरह इसमें आते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उसको कहते हैं जैसे उठान होती है, इसमें उठान दा इसी तरह जब भी इसमें क्योंकि ये आसान इसलिए कह रहे हो ताकि समझ आ जाए, वरना मुश्किल दिखाइयां भी बड़ी हैं, वो भी मैं बोल सकता हूँ। अब टुकड़ा जैसे ये टुकड़ा जैसे इस तरह की कुछ चीजें में अब इसको भी मैंने तीन दफा गाया, लेकिन मैंने इसमें आधे मात्रे का दम शो किया है, तो वो मतलब उसको कंप्लीट किया मैंने। ये इसके होता है कई दफा मुख्तलिफ जगह से उठा के अपने तिहाई कहनी है, कभी सम से, कभी दूसरे मात्रे से, ती से, मतलब इस तरह देखना पड़ता है, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है इसके ऊपर कि किस जगह से मैं लेके इसको उठा सकता हूँ। इसके अलावा जैसे ये मैं टुकड़ा भी आपको सुनाया छोटा सा, इसके अलावा फिर होती है गत। गत जो होती है ना, वो थोड़ी सी फर्क होती है टुकड़े से, क्योंकि टुकड़े जरा छोटे छोटे होते हैं, उसमें छोटी छोटी सी बातें की जाती हैं। अब गत जैसे है, एक गाता है बड़ी अच्छी उस्ताद मियां कादर बख्श खान साहब, उनकी गाता है, मतलब इस तरह मतलब ये तकड़दान दिन आगे गित किता तक दिन के दिन गण दिन गण धार धार दिन आगे गित किता तक दिन के तकड़दान दिन आगे गित किता धड़कन आगे गित किता तक दिन धड़कन आगे गित किता तक दिन धड़कन आगे गित किता तक दिन। मतलब ये बुजुर्गों का काम है, मतलब कोई नया नहीं बनाया हो अपनी तरफ से, तो ये मतलब इस लेवल का काम उन्होंने किया हुआ है। ये होगी गत, मैंने दो गते पढ़ दी,
1: ठीक है,
2: ताकि कुछ थोड़ा सा आइडिया हो। अब जैसे परन होती है, परन का अंदाज होता है, क्योंकि वो बजाई जाती है बेसिकली पखावज के ऊपर, ज्यादातर परन बजाई जाती है खुले अंदाज से बजती है, या वो दुक्कड़ अंदाज बजाते हैं ना, जो तबला होता है वो बड़ा वो होता है, वो तबले की तरह।
1: एक सेंटेंस में अगर आप दुक्कड़ अंदाज के बारे में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दें।
2: हाँ, वही मैं बताने लगा, वो होते हैं तबले की तरह, लेकिन वो बाया जैसे कवाली का बाया नहीं होता, बड़ा होता है जरा थोड़ा सा, और उनका जो दाया वो भी थोड़ा सा खुला ही होता है, वो भी पांचवें काले पे मिला के ना नीचे पखावज अंदाज ज्यादा बजाते हैं। अब तो खैर पहले काले का भी बजा लेते ना, दूसरे का भी बजाना शुरू, वो पहले तो बेसिकली ऐसे वो खुला अंदाज बजाए पखावज की तरह, मतलब खुले अंदाज से हाथ खुला बजाते थे, जैसे पखावज में खुले अंदाज से बजाया जाता है। तो जैसे कि उसमें अभी जिक्र हो रहा था परन का, अभी हमने जैसे गत पढ़ी है, मिसाल है कि मैं एक गत को खुले अंदाज से बजाता हूँ, अब यही हालांकि ये बोल तो तकरीबन ऐसे ही आपको लग रहे हैं ना पखावज के अंदाज के, क्योंकि ये उस्ताद मियां कादर, क्योंकि वो बेसिकली पखावज भी बजाते थे, उसके बाद उन्होंने तबला सीख के फिर तबला भी कुछ इतना कमाल बजाया कि पूरी दुनिया में उनके इतने इतने नामवर शागिर्द हैं, जैसे उस्ताद अलाका खान साहब, फिर उस्ताद ताफू खान साहब, अल्ताफ हुसैन ताफू खान साहब, उस्ताद शौकत साहब, इनका भी रहती दुनिया तक नाम रहेगा, मतलब इतना उन्होंने बड़े बाबरकत उस्ताद थे, तो वो ये बजाया करते। तो इसको मैंने खुले अंदाज से पढ़ा, तो वो मतलब इसको खुले अंदाज से जाऊँ तो वो पेश करेगा कि ये फर्क है,
1: फील डिफरेंट आ जाएगी।
2: अगर इसको बंद हाथ के साथ मैं बजाऊंगा तो वो उसको हम कह देंगे गात, वो हल्का सा खुले हाथ से बजाएंगे जब, तो वो पतंग का अंदाज होगा।
1: तो बेसिकली है आसपास की चीजें,
2: आसपास की चीजें हैं, लेकिन ये इसमें बड़ा फर्क था। जैसे घरानों की तालीम फर्क होती है, जैसे दिल्ली घराने का काम फर्क है,
1: बिल्कुल,
2: मतलब अजड़ाड़े का फर्क है, वो जरा टेढ़ा करके बोल को कहते, सीधी नहीं करते बात, जैसे दिल्ली का, जैसे मैं कहता हूँ पड़ा आपके सामने, दाती दागे ना दात्र दाती दागे तिन्ना गिन ना दाती, मतलब वो हर घर का एक अपना अपना, वो आपको फर्क लगा या आपको फर्क लगे,
1: इस तरह पूरा है। हर घराने में एक डिफरेंट उनका स्टाइल आ जाता है बजाने का भी गाने का भी। तो खैर ये तो प्रकाशन के, मगर
2: पंजाब का नाम लिए बगैर मेरा ख्याल है कि तबला पूरा नहीं होता। बड़ी मतलब बड़ा काम किया है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली का, बहुत बड़ा घराना तबले का, मतलब अजड़ाड़ा, फिर इसके अलावा लखनऊ, और मतलब ये इन्होंने बड़ा बड़ा काम किया।
1: नाम लेने शुरू करें तो फिर तो हम यहीं बैठे
2: बड़े हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब एक ऐसा घराना है कि उसने ऐसी छाप अपनी छोड़ी है कि तकरीबन सारे घराने इसको फॉलो, जैसे हजरत जो अमीर खुसरो खान साहब है, जैसे उनको आज तक फॉलो कर रहे हैं, फिर गाने में जैसे अमीर हुसैन खान साहब को कॉपी करना शुरू, इसी तरह पंजाब जो है ना वो इतना छा गया कि सार घराने को उसको भी सीखना पड़ा और उसके साथ उसको अंदाज को शामिल करना पड़ा अपने पास। जैसे उस्ताद जाकिर साहब, वो तो बड़े घरानों का इलम जानते थे,
1: ऐसे के,
2: लेकिन वो भी ज्यादा पंजाब अंदाज से वो तबले को पसंद करते थे बजाना।
1: दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो कि वकास भाई, अगर मैं करता रहूं तो शायद मैं पूरी रात आपके साथ यहीं बैठा रहूंगा। प्रकाशन के बारे में, बीट्स के बारे में, जैसे मैंने इस शो का आगाज भी इसी बात से किया था कि मेलेडी और ट्यून तो एक चीज है, लेकिन जब तक उसके साथ बीट इनकॉर्पोरेट नहीं होती तब तक वो ना मेलेडी कंप्लीट होती है, ना वो ट्यून कंप्लीट होती है, ना कोई कंपोजिशन कंप्लीट होती है। तो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें अगर कोई और चीज आप ऐड करना
2: चाहें, मैं इसमें ये, जैसे हमने परकशन का जिक्र किया, अभी तो हम तबले की बात कर रहे थे, पुकावज की, जैसे कि नाल, नाल फिल्मी जो हमने अंदाज देखा, नाल बजाते थे उसमें, क्योंकि उसका थोड़ा स्टाइल तबले के अंदाज का था। ढोलक, मतलब इनका काम लिए बगैर तो काम नहीं ना, मतलब बड़ा बड़ा अच्छा काम किया लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब फिल्मी ढोलक, नाल और तबला, ये इकट्ठे रख के बजाते थे लोग, और उसका एक क्या असर था, इतना मजा आता था,
1: और उन्हें साउंड
2: बोंगा बोंगा, दुम्बक, कांगो, मतलब ये बड़ा काम किया है ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है खास। वैसे तो ढोल जो हमारे पंजाब का रिवायती साज है, एक हिसाब से ढोल के बगैर तो आपको पता है
1: कोई शादी कंप्लीट होता,
2: तो लोग नाचना शुरू हो जाते हैं। ढोल एक बड़ी अच्छी, फिर नकारा जो कि अब तो तकरीबन मेरा ख्याल से खत्म ही हो गया, चंद एक लोग बजा भी रहे हैं लेकिन कम सुनने को मिलता है। ढोल तो आपको फिर भी मिल जाता है ना कहीं ना कहीं सुनना, लेकिन अच्छा ढोल बजाने वाले अभी भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि पाकिस्तान में भी बजा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग बजा रहे हैं। तो ये कुछ साज थे जिनका नाम लेना एक जरूरी था, तो मैंने कहा इसका नाम लेते जाएं साथ साथ।
1: This has been a very interesting conversation, Vikas भाई। आज हमने क्या, मैं अपने अगर सिर्फ अपनी बात भी करूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है तबले के लिहाज से, तबले की हिस्ट्री के लिहाज से और तबले की लैंग्वेज के लिहाज से, वेरी इंपॉर्टेंटली। तो इसी के साथ आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। आज हम कॉन्वर्सेशन में थे सर अनिल वकास के साथ, उस्ताद अनिल वकास साहब के साथ, जिन्होंने हमें प्रकाशन के बारे में इतनी अच्छी और इतनी वास्ट तालीम दी। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट होरब शम्स, आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर कहानी। आई विल बी बैक विद मेनी मोर एपिसोड्स एंड मेनी मोर फन कॉन्वर्सेशंस। तब तक सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज़।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: यू आर अ नेशन, फूड सेंट्रिक।

दुआ है फिर से एक बार चमके वो रोशन सितारा, जैसे कायद ने सोचा था वो पाकिस्तान हो हमारा।

0: सुरोरतान सुरोरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: एडमिशन्स ओपन फॉर फॉल 2020।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास अंसारी, और प्रोग्राम हम कर रहे हैं FM 92.6 से। और आज हम जो आज गुफ्तगू करेंगे उसमें जो शुरका हैं और जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बहुत दिलचस्प मौजू है। हमारा आज का जो ये रेडियो शो है, हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है, इसमें जो शुरका हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। डॉक्टर शाजिया हसन साहिबा हैं, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट साइकोलॉजी को हेड करती हैं। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ही मिस नईमा सरफराज, और ये दोनों मेहमान हमारे बहुत दिलचस्प मेहमान आज जिस चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे वो बुनियादी तौर पर एक आने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में है जो कि अक्टूबर 2025 के अंदर होने जा रही है। हम उसकी तारीखें भी इनसे पूछेंगे, बाकी चीज़ें भी पूछेंगे, और आपको बताएंगे कि ये कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो महज गुफ्तंद नशिस्तंद बर्खास्तंद वाला मामला नहीं होता कि आए बैठे बातें की और चले गए, बल्कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हम चीज़ निकालते हैं कॉन्फ्रेंस में, उसमें कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, और फिर वो डिपेंड करता है उन पॉलिसी मेकर्स के ऊपर जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो रिसर्चर्स का काम होता है वो अपना काम अपने लेवल का वो कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं दावत दूंगा डॉक्टर शाजिया हसन साहिबा को कि वो सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस की जो अहमियत है और तारुफ है वो ज़रा करवा देंगे। ये कॉन्फ्रेंस होने कब जा रही है, इसका मकसद क्या है? डॉक्टर साहब
3: बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा अच्छा तारुफ कराया आपने, और बड़े अच्छे तरीके से आपने हमारी कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ है जिसको हम एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे थे ये प्रोग्राम, तो आपने बड़े अच्छे अंदाज से इसका इंट्रोडक्शन कराया। मैं जो कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करना चाहूँगी कि हम जो ये कॉन्फ्रेंस कराते हैं, ये हम पिछले 2-3 साल से कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट करा रहे हैं, और पहले हम 2 कॉन्फ्रेंसेस करा चुके हैं, उसके बाद अब ये 3rd कॉन्फ्रेंस है जो हमने शुरू की है। इस पे हमने काम करना शुरू किया हुआ है तकरीबन 1 साल से
2: जी।
3: और ये कॉन्फ्रेंस है मेंटल हेल्थ, ह्यूमन डिग्निटी और क्लाइमेट चेंज पे
2: जी। और वो क्लाइमेट चेंज जो जिससे अभी हम ताज़ा मुतासिर हो रहे हैं,
3: बिल्कुल जी, बिल्कुल
2: होते भी चले आए हैं
3: बेशक। इस वक्त हम हमारा पूरा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालात से दोचार है, ख़ास तौर पे पंजाब भी, सिंध भी, और मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशानी है वो ख़ास तौर पे इंसानों को किस तरह से ज़हनी तौर पे मुतासर करती है, किस तरह से उन पे कुछ असरात ऐसे होते हैं कि जो उनकी डे टू डे लाइफ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, किस तरह से वो महसूस करते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। और ना सिर्फ ये कि उनके चैलेंजेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल या उनकी जो कम्युनिटीज़ की रिलोकेशन है उसी से रिलेटेड होते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो वो ख़ुद महसूस कर रहे होते हैं उस पर बहुत कम बात होती है।
2: ऐसे ही।
3: और जो दूसरा इसका जो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड है
2: जी।
3: उस पर हम ये जो बात करना चाह रहे हैं कि इंसान की जो तौकीर है, जो इज्जत है
2: जी,
3: जो डिग्निटी है, उसकी क्या अहमियत है, और फिर इस डिग्निटी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के साथ, कि वो हमारी कम्युनिटी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ है, जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, किस तरह से पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को इन मसाइल के साथ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. تو اس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو دو ایریاز ہیں اس کا کس طرح کے اثرات ہیں انسانی ذہن پہ, اور پھر اس انسانی ذہن پہ جب اثرات ہوں گے تو انسانی معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے, ہمارا ملک جو ہے اس پہ کیا اس کے اثرات ہوں گے, اور اسی طرح سے جو پوری دنیا میں اس وقت چینجز آ رہے ہیں, جس طرح سے بہت سارے ملک اور بہت سارے معاشرے وار کو بھی اس وقت فیس کر رہے ہیں, تو کس طرح سے اس میں ہیومن ڈگنیٹی
2: جیسے غزہ میں ہو رہا ہے, جس طرح سے اور جگہوں پہ ہو رہا ہے, اس سے ظاہر انسانوں کے اوپر کیا ہولناک اثرات مرتب ہوتے ہیں.
3: بالکل, ظاہر ہے ان کی بنیادی ضروریات کو جب روکا جاتا ہے, جب وہ ان کی ایکسیس ٹو ریسورس

0: है नेचुरल क्लाइमेटीज के अंदर या क्लाइमेट चेंज जिसको कह लीजिए उसके नतीजे में अभी हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारे नुकसान हुए
1: जी,
0: अच्छा कहीं ये जलजले की सूरत में कहीं ये सैलाब की सूरत में गो वो नेचुरल क्लाइमेटी है जलजला वो उसका क्लाइमेट चेंज के साथ उस तरह से डायरेक्टली शायद कोई लिंक नहीं है लेकिन बहरहाल हमारे रीजन में ही हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो नुकसान हुआ है तो यानी ये जाहिर है कि इस सारे तनाजुर के अंदर ये आने वाली कॉन्फ्रेंस जो अक्टूबर में हो रही है अक्टूबर की कौन सी तारीखें इसके लिए आपने रखी है कॉन्फ्रेंस की
1: जी सर हमारी जो कॉन्फ्रेंस है वो 29 और 30 अक्टूबर को हो रही है उससे पहले दो दिन के एक और इवेंट्स है जिनको हमने डिग्नी लॉक्स का नाम दिया है उसके लिए हमारी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर एवलिन लिंडनर
0: ये वही है जो नॉर्वे से थी
1: जी,
0: और पहले भी यहां पर आई थी
1: बिल्कुल सर जो जनवरी में हमारे पास आई थी और तब भी उन्होंने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स यही वाले करवाए थे उसी की कॉन्टिन्यूएशन है दो दिन के वो है और उसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसका वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है ह्यूमन DHS के नाम से और वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो से भी एसोसिएटेड है हाँ जी
0: ठीक है मिस नीमा ये सब कुछ आपने बताया इसका बेहद शुक्रिया तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस से पहले अक्टूबर के अंदर ही दो दिन की आपने बताया कि एक्टिविटीज चलेंगी वो सरगर्मियां वो एक्टिविटीज क्या होंगी
1: जी सर उनका उनको हम नाम देते हैं डिग्नी लॉक्स का और बेसिकली उसका मकसद ये है कि वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट क्लासेस के आप कह लें यूजली हम उसमें MS लेवल के स्टूडेंट्स ही लेते हैं
0: जो हमारे यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो जेरे तालीम तलबा और तालिबात हैं MS लेवल के वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं
1: वो उसका हिस्सा होंगे और वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें वो ह्यूमन डिग्निटी पे बात करती हैं कि
0: अच्छा,
1: कौन
0: ये वो डिग्निटी से डिग्नी लॉ आप
1: एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है डिग्निटी डायलॉग
0: डिग्निटी
1: कंबाइन करके उन्होंने उसका नाम रखा है डिग्नी लॉग जी
0: ओके
1: जी सो उसमें वो डिग्निटी की बात करती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरह के मसाइल हमारे बच्चों को जिनका सामना है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डिग्निटी एंड आल्सो ह्यूमिलिएशन ये दो एस्पेक्ट्स हैं उसके तो वो उस पे बात करती हैं जैसे जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस हम फेस कर रहे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड
0: रेशियल बेस्ड हो सकते हैं
1: रेशियल है कुछ और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं
0: उनके साथ
1: जो जिनको जो बेसिक जरूरतें जिंदगी की नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए सो वो उस पे बात करती हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डिग्नी लॉक्स कंडक्ट करती हैं एंड देन वो उस डेटा को कंबाइन करके उसको प्रेजेंट करती हैं दैट्स हाउ द होल कॉन्सेप्ट वर्क्स
0: जी ठीक है तो मिस नईमा से जारी गुफ्तगू और डॉक्टर शाजिया साहिबा से जारी गुफ्तगू को हम इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू करेंगे अब वक्त हुआ एक ब्रेक का एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम दोबारा मिलेंगे हमारे साथ रहिएगा और हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामाइन, FM 92.6 पे आपको हम वेलकम करते हैं। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला अब फिर जारी हो रहा है दोबारा वक्फे के बाद। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट UCP में यहाँ। तो मैं डॉक्टर साहब, आपने जो थीम बनाई है कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने जो है वो जो जहनी सेहत है और उसका इंसानी वक़ार के साथ ताल्लुक़ है, मेंटल हेल्थ और उसका ह्यूमन डिग्निटी के साथ जो रिलेशनशिप है, जरा थोड़ा सा इसको एक लेमैन के लिए, एक आम शख्स के लिए जरा बयान कीजिएगा ताकि वो समझ सके कि ये क्या है चीज, ये ज़हनी सेहत और इंसानी वक़ार, उसको जरा थोड़ा सा ये चीज़ें रिलेट करने में दुश्वारी होती है, जरा इसकी वजाहत कीजिएगा।
2: जी डॉक्टर साहब, ज़हनी सेहत को जब हम इंसानी वक़ार या हम डिग्निटी के साथ रिलेट करते हैं तो इंसान की जो वकार है, मेरा ख्याल है वो दुनिया में बड़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। हमारा जो वजूद है उसके लिए हमारे वकार की बहुत अहमियत है। हमें लोग कैसे देखते हैं, हमें लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे साथ कैसा रवैया रखते हैं, ये बड़ा इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और इंसानों का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये एक छोटे बच्चे से ले कर एक बुजुर्ग इंसान जो है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे फेजेस हैं जिसमें हम एक बिल्कुल जो छोटा बच्चा है जो 5 साल तक की उम्र का है, फिर एक 12 साल तक की उम्र का है, फिर एक टीनेजर है जो 18 साल की उम्र का है, फिर उसके बाद एक 25 से 30 साल 35 साल का एक एडल्ट है, फिर मिडल एडल्ट हो रहा है, फिर ओल्ड एज है। हर उम्र की अपनी इज्जत की तौकीर की रिक्वायरमेंट्स होती है,
1: प्रोटोकॉल है
2: और डेवलपमेंट का हिस्सा भी है
1: जी।
2: क्योंकि यही जो इज्जत है, यही जो तौकीर है, यही जो डिग्निटी है, ये हमारे सेल्फ को डेवलप करती है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये हमें माहौल भी बताता है और हम खुद भी उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं। और वक्तन फवक्तन जो फीडबैक हमें लोगों की तरफ से मिल रहा होता है वो या तो हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम को बढ़ाता चला जाता है या फिर वो हमारे सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस को कम करता चला जाता है। जैसे
1: लामिक बाल ने इसको कहा है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। यानी सेल्फ एस्टीम में अपने आप को इस तरह से लेके चलें कि अल्लाह ताला भी आपको पसंद करे,
2: पसंद करे। और सेल्फ एस्टीम डेवलप करने वाले लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारे वो अफराद हैं जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, जो हमारी लीडरशिप है और जो हमारी कम्युनिटी है ओवरऑल, ये सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ह्यूमन डिग्निटी की तरफ कि वो किस तरह से इंसानों को ट्रीट करते हैं।
1: बिल्कुल ठीक।
2: इंसानों को हम किस तरह से सोचते हैं कि इंसानियत की, हम कहते हैं कि इंसानियत की मेराज ही यही है कि हम इंसानों के हकूक भी पूरे करें और इंसानों को अच्छे तरीके से डील करें।
1: बिल्कुल ठीक।
2: तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल हम देखते हैं कि आइसोलेशन की तरफ बहुत जा रही है यूथ
1: जी।
2: बहुत अलग थलग होना शुरू हो गए हैं। तो वो जो कनेक्शंस थे, अटैचमेंट्स थी जिससे हम वो डिग्निटी फील करते थे
1: और डिसअपीयर हो रही है,
2: वो डिसअपीयर हो रही है। दूसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, क्योंकि इस वक्त
1: जैसे तौर पे कमजोर लोग हैं, तबकात हैं,
2: अब इसमें बहुत सारे तबकात आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अभी हम जब डिग्निटी की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं और उसमें जो कम्युनिटी हम डील करते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ है। अब क्या उनको डिग्निफाइड वे में मुआशरा ट्रीट कर रहा है? क्या ये एक फैक्टर नहीं है कि हम अगर किसी के घर के अंदर कोई ज़हनी मरीज हो तो वहाँ जाना, उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ रिश्तेदारी करना, क्या ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन नहीं करते कि हम इस फैमिली के साथ अपना ताल्लुक रखें या ना रखें? फिर जहाँ पे उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या फैमिलीज उन पे इन्वेस्ट करने पे तैयार हैं कि दे हैव देयर राइट टू बी ट्रीटेड, जैसे बाकी ज़हनी अमराज के अलावा बीमारियाँ हैं उनके इलाज कराया जाता है, तो डिग्निफाइड वे में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं करवाया जाता ट्रीट, उसको क्यों छुपाया जाता है? और फिर तीसरा जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसमें इतने कम लोग हैं हमारे पास इस वक्त कि ऑल ओवर द कंट्री अगर हम कैलकुलेशंस देखें तो वो इतनी मिनिमल हैं कि वो हर पर्सन की एक्सेस टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो डिग्निटी और फिर ट्रीटमेंट मेथड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई एथिक्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग अपनी जहनी तौर पे अपनी रियलिटी को तो पहचान नहीं पा रहे होते
1: जी।
2: उन्हें तो एहसास ही नहीं होता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके जहनी मसाइल होते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल या हम जिनको डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है। तो आपने कुछ वाकयात सुने होंगे कि जिसमें दूसरा कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो वहाँ पे एम्प्लॉई है वो उनको मिसट्रीट कर रहा है, उनको मार रहा है, और साथ वो एक जुमला इस्तेमाल करता है जिसने मेरे दिल पे तो बहुत असर किया, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोगों को कैसे इफेक्ट किया होगा, कि तुम तो सुन और बोल नहीं सकते, आप अपने बाप को जाके क्या बताओगे? तो ये जो तकलीफ है, ये जो डिग्निटी हम नहीं दे पा रहे, तो हमें हर लेवल पे ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वो जो बहुत लोअर लेवल पे भी एक पर्सन इन लोगों के साथ डील कर रहा है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, कि पॉलिसी लेवल पे भी चेंजेस आनी चाहिए, ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो डिग्निटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करना चाहते हैं।
3: मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैडम ने बात की, जब हम फैमिलीज की भी बात करते हैं ना, खासतौर पर जब हम स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं, तो मेरी कुछ रिसर्चेस भी क्योंकि उस पर हैं, तो हम जब मदर्स से बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स जो उन्होंने रिपोर्ट किया, जो लेवल्स उनमें बहुत ज़्यादा हाई थे, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, सोशल आइसोलेशन और सोशल रिजेक्शन बहुत ज़्यादा थी। और सोशल आइसोलेशन और सोशल रिजेक्शन का मतलब ये था कि लोगों ने उनको अपने घर बुलाना छोड़ दिया, क्योंकि आपका बच्चा तो बहुत शरारतें करता है, वो हमारे घर आता है तो हमारा तो पूरा घर हिल जाता है, तो आई एम सॉरी, हम आपको बुला नहीं सकते, और ये उनको कहा जाता था।
1: बात सुनते तो ये ना कि कह दिया गया है, जब बहुत सारे सुनते ऐसे नहीं, कहा ही नहीं जाता, लेकिन वो एक खामोश सिग्नल होता है, आप समझ जाते हैं पहला तो आना जाना था और अब कम।
3: तो वो जो सोशल रिजेक्शन वाला एस्पेक्ट है वो बहुत डीपली उन्होंने महसूस किया और उसको रिपोर्ट भी किया।
1: सही,
3: और वहां पे आप देखें कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब हो गई।
1: यकीनन। अच्छा मिस नेमा, आप ये बताइएगा कि इस मेंटल हेल्थ का, ज़हनी सेहत का क्लाइमेट चेंज के साथ, मौसमी तब्दीलियों के साथ कैसे लिंक है? चलें, ये बाकी चीज़ें तो हमें समझ में आती हैं, ये सोशल आइसोलेशन की बात की, सोशल रिजेक्शन की आपने बात की, और एक शख्स जो है वो बेचारा बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, और उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, फिर उसको ये कहा जाए कि भाई तुम कैसे बताओगे वगैरह वगैरह वगैरह, चाहे वो इशारों से बताया जाए, अगर वो सुन सकता है तो चले, वो बोल नहीं रहा है तो उसको बताया जाए, तो ये वाकई किसी इंसान की बेबसी का बहुत बड़ा मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, और तकलीफ तो पहुँचाई जा रही है।
2: और इसी को डॉक्टर साहब हम ह्यूमिलेशन
1: जी, बिल्कुल ह्यूमिलेशन, बिल्कुल
2: इसी को हम ह्यूमिलेशन कहते हैं।
1: तो मिस नईमा, आप ये बताइएगा कि अब इसको क्लाइमेट चेंज के साथ आप किस तरीके से जबरदस्ती मिला रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जबरदस्ती मिला रहे हैं, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, इंतजार नहीं होगी, मुझे लग रहा है जबरदस्ती मिला रहे हैं आप।
3: बिल्कुल सर, मैं आपको कुछ इसको एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ ही मेरा ख्याल हफ्तों की बात है, स्मॉग आने वाली है लाहौर में
1: जी, बिल्कुल,
3: और हमारी कुछ अगेन रिसर्चेस हैं इसके ऊपर भी, कैसे स्मॉग ने इफेक्ट किया है लोगों की फैमिली लाइफ को,
1: अच्छा।
3: बच्चों को और उनकी मदर्स को और इवन फादर्स को भी। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्मॉग है तो यू आर स्टेइंग एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपकी पूरी रूटीन जो है वो भी इफेक्ट हो रही है, आप काम पे नहीं जा रहे, आप स्कूल नहीं जा रहे, सो उस दौरान इट हैज बीन रिपोर्टेड कि वो जो कुछ आप कह लें जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इवन डोमेस्टिक वायलेंस, इट हैज सेड टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग दैट टाइम, विच इज अलार्मिंग फॉर अस, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा है ना, आपका काम खत्म हो रहा है, आप काम पे नहीं जा रहे, आप घर रह रहे हैं, और वो आपके अंदर एक बिल्डअप एग्रेशन ला रहा है, और वो एग्रेशन फिर एक ऐसी तरह से निकल रहा है जिस तरह से नहीं निकलना
1: चाहिए। पहले अगर आप ऑफिस में थे, ऐसे लोग जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बुरा रवैया अख्तियार करते हैं, अब चूंकि वहाँ छुट्टी है, अब वो फ्रस्ट्रेशन घर पे निकल रही है, बच्चों पे निकल रही है।
3: दूसरी ये भी बात है कि छुट्टी है, कई लोगों का काम ऐसा है ना कि आप रोज जा रहे हैं, आप रोज काम कर रहे हैं, एंड यू आर अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, एंड व्हेन यू आर नॉट गोइंग एवरी डे तो यू आर स्टेइंग होम, और वो आपको और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है
1: कि आप कमा नहीं रहे, घर का खर्चा कैसे चलेगा।
2: साथ मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी सर।
1: डॉक्टर साहब, अभी इस हम गुफ्तगू को अभी लेते हैं, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तो इस ब्रेक के बाद हम इस बड़ी प्रोडक्टिव और नॉलेजेबल जो डिस्कशन है इसको जारी रखेंगे। सामीन हमारे साथ रहिएगा, हम अभी कुछ देर बाद वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

मेरे कारवां हम रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे असल दास्तां।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

number one radio station, FM 92.6, UCP ke duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौर तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

حرفن مولا ہو جائے گا مومن حق جدو سینے لایا دل ہویا روشن

कोहे तूर पर गूंजती मूसा की ये सदा है, जो हर शय में नजर आए बस वो ही।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।